अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलराव जी की जय।

आविच्छिदस्य कामप्रेर् विश्वे देवा समासदैते ओम विजवादत्त।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 काज 11वां जत्था प्रातः भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 9153 श्रद्धालु जो है घाटी की ओर इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवा दवा है। यात्रा का 11वां जत्था कुल मिलाकर 359 छोटे बड़े वाहनों में घाटी को की ओर रवाना किया गया, जिनमें से 3429 श्रद्धालु बालतल के मार्ग से शिव जी के दर्शन प्राप्त करने पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वही पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5724 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा

2026 का आज 11वां जत्था। बड़े खुश असलूब के साथ जो है रवा दवा है खुशगवार मौसम में ये कारवा वादी की ओर रवा दवा है। कुल मिलाकर 359 छोटे बड़े वाहनों में 9153 श्रद्धालु घाटी की ओर रवाना किए गए। आकाशवाणी सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश करता है कि सभी तीर्थ यात्री जो है प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। आपसे यही निवेदन कि जब भी आप भगवती नगर बेस कैंप से होते हुए घाटी की ओर रवाना किए जाएंगे, बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है आप ये कोशिश करते रहें कि आप प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें और बार बार इस बात पर प्रशासन द्वारा जोर दिया गया है, जोर दिया जा रहा है कि सभी तीर्थ यात्री जो है अपना ऑनलाइन पंजीकरण अपनी अपनी जगह से ही करें जहाँ से आप यात्रा के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब आप बगैर रजिस्ट्रेशन के वादी पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको काउंटर्स पर बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। कोशिश करें कि पहले ही आप ऑनलाइन पंजीकरण करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद अपना RFID कार्ड हासिल करें। जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होगी वो पहले ही आप एडवांस में ही करके आए ताकि यात्रा के दौरान जो है वादी पहुँच कर जो है आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। प्रशासन द्वारा आपके लिए जगह जगह पर सहायता मिलेगी, जगह जगह पर आपके लिए काउंटर्स बनाए गए हैं, हेल्पलाइन डेस्क बनाए गए हैं, मेडिकल काउंटर्स बनाए गए हैं, बेस कैंप्स बनाए गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं ताकि सभी तीर्थ यात्री जिस भी क्षेत्र से आ रहे हैं उनको आसानी हो, उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप पर भी यह जिम्मेदारी कि आप जो है सरकार के साथ प्रशासन के साथ कोऑपरेट करते रहे ताकि ये पूरी यात्रा जो है पवित्र गुफा तक का ये जो सफ़र है वह आप अच्छे से सफल और सुखद तरीके से पूरा कर पाए। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के अपडेट को लेकर हम हर रोज ये कोशिश करते हैं कि यात्रा की कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा करें। इसी सिलसिले में आज भी पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा की बात करें तो शनिवार को सुबह सुहाने मौसम में भगवती नगर आधार शिविर से अपने निर्धारित वक्त पर सुबह तड़के यहाँ से यात्रा रवाना हुई। लगातार श्रद्धालुओं के जत्थे बड़ी संख्या में पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए यहाँ आधार शिविर भगवती नगर से बड़े जोश खरोश हर्षोल्लास और बाबा बर्फानी के फलक शगाफ जयकारों को लगाते हुए अनुशासित तरीके से बसों, निजी वाहनों में सख्त सुरक्षा घेरे में घाटी की और बाबा बर्फानी के दोनों मार्गों की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज श्री अमरनाथ जी की यात्रा के इस पर्व के दौरान शहर में जहां एक अलग उत्साह का माहौल है, वहीं जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये मौका न सिर्फ तीर्थ यात्रा पर जाने का होता है बल्कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो कल्चर है उससे भी रूबरू होने का मौका उन्हें मिलता है। इसी सिलसिले में

आज हम बात करेंगे राही बस सेवा की, जिसको लेकर हमने कई रिपोर्ट्स में भी बताया, लेकिन आज बात करेंगे कि किस तरह से यादगार बना रही है ये बस सेवा श्रद्धालुओं के सफर को। इस बस सेवा से जम्मू शहर के पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर देखने का भी श्रद्धालुओं को मौका मिल रहा है, और उनके इस यात्रा पड़ाव के दौरान शहर में घूमने और यहाँ की संस्कृति को समझने का भी मौका मिल रहा है, जो एक बड़ी अच्छी शुरुआत है इस सेवा की, जिससे यात्री जो है वो एक जगह ही मतलब सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि शहर के कल्चर, शहर की जबान, शहर के व्यंजन, शहर की जो आवाजाही है उसको भी समझने का और उसको भी देखने का उन्हें मौका मिलता है। और ये मौका बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी शहर में आप पहुंचते हैं, वहाँ किसी सीमित किसी जगह पर आप रहते नहीं है, बल्कि शहर में घूमते फिरते आप अलग अलग जगहों का भी भ्रमण करते हैं, तो एक अलग मौका होता है श्रद्धालुओं के लिए भी। तो ये एक सेवा जो है ये प्रशासन की तरफ से जो शुरू की गई, इसको लेकर श्रद्धालु बहुत उत्साहित है और उनकी इस यात्रा पड़ाव के दौरान शहर में घूमने, यहाँ की संस्कृति को समझने का भी मौका मिल रहा है। श्रद्धालुओं के मुताबिक यात्रा के लिए प्रतीक्षा के दौरान उन्हें इस बस सेवा के माध्यम से शहर और आसपास के इलाके भी देखने को मिलते हैं और इससे यात्रा और रोचक बन जाती है। पर्यटकों के मुताबिक पहले उन्हें सीमित तौर पर माता वैष्णो देवी के द्वार और बाबा अमरनाथ जी के द्वार की कच्ची जाने का मौका मिलता था, क्योंकि जो ये दो है, माता वैष्णो देवी का जो द्वार है वो बहुत वर्ल्ड नॉन द्वार है, विश्व भर में इस द्वार को माना और जाना जाता है, और जो बाहर के पर्यटक है वो हमेशा कोशिश होती है उनकी कि उस द्वार तक पहुंचा जाए। तो पहले पहल क्या होता था कि यात्राओं में माता वैष्णो देवी का द्वार तो होता ही था, और उसके साथ फिर ज्यादा से ज्यादा वो बाबा अमरनाथ जी के द्वार तक पहुंचते थे, लेकिन इस बार इस बस सेवा से और जो प्रशासन की तरफ से की गई कोशिश है उससे बाबा अमरनाथ के जो श्रद्धालु हैं उन्हें यहाँ शहर की सांस्कृतिक विरासत को भी देखने का मौका मिल रहा है, यहाँ के बाजारों को, यहाँ की जो अलग विरासत है उसको भी देखने का मौका मिलता है। वही बात करें भगवती नगर के आधारेश्वर में श्रद्धालुओं की थकान मिटाने के लिए खासतौर पर योग थेरेपी कराई जा रही है, ये बड़ी अच्छी साबित हो रही है तीर्थ यात्रियों के लिए, और यात्री भी खुलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। आयुष विभाग की तरफ से ये चलाई जा रही है मुहिम बीते 2 जुलाई से नियमित तौर पर शिविर चला रहा है। योग विशेषज्ञों की देखरेख में ये योग कराया जाता है, यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में लोग शिविर में हिस्सा लेते हैं। ये सिलसिला सुबह शाम चलता है भगवती नगर के आधार शिविर पर, और इस दौरान इस कठिन सफर के लिए श्रद्धालुओं को जहाँ प्राणायाम और गहरी सांस लेने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और यात्रा की कठिन परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहने की और थकन दूर करने का मौका श्रद्धालुओं को मिलता है। तो एक अच्छी सेवा ये भी हो रही है, जैसा मैं हमेशा अपनी रिपोर्टों में कहता हूँ कि कई बार प्रशासन की तरफ से बहुत सी सुविधाएं अलग से यात्रा के बगैर भी दी जाती है, योग उनमें से एक है, जो योग के द्वारा जो तीर्थ यात्री है वो अपनी थकन भी दूर करते हैं और इस कठिन सफर के लिए तैयार भी होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी श्रृंखला का सफर है, यहाँ गहरी सांस की ट्रेनिंग भी दी जाती है और यात्रा की कठिन परिस्थितियों के लिए श्रद्धालुओं को तैयार भी किया जाता है। वही यहाँ योग यहाँ भगवती नगर निवास स्थान में शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, खास तौर पर कल शनिवार को सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और मॉडर्न आर्ट्स ने गणेश वंदना और शिव संस्कृति पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, और यहाँ पहुंचे कलाकारों ने यहाँ के माहौल को भी भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं और दूसरे दर्शकों ने इस प्रस्तुति की जमकर सराहना की, और जब श्रद्धालु एक तरफ योग दूसरी तरफ इस सांस्कृतिक सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं तो उनकी थकन और उनका जो उत्साह है और बढ़ जाता है, और एक कार्यक्रम का जो मजा है उसका भी श्रद्धालु ने मजा लूटा, और वही आधार शिविर में माहौल भी एकदम भक्तिमय होने के साथ साथ मनमोहक भी हो गया। इसी दौरान आज की अगर हम बात करें तो रोजाना तवी रिवर फ्रंट पर शाम 7 बजे कल की बात थी, मैं माफी चाहता हूँ, शाम 7 बजे की वहाँ आरतियां भी

0: होती है, यहाँ तवी रिवर फ्रंट पर, और आराधना की जाती है। इस दौरान महाआरती में श्रद्धालु खुलकर हिस्सा लेते हैं और शिव भक्ति में लीन होकर एक अलग ही अनुभव हासिल करते हैं। तो महाआरती भी होती है और वहीं यहाँ तवी रिवर फ्रंट पर राम मंदिर गीता भवन में कतारों में निजी करण भी हो, पंचीकरण भी हो रहा है और जोश जज्बे के साथ श्री बाबा भोलेनाथ के जयघोष लगाते हुए माहौल एक तरह से जज्बा भी बना रहता है और पंचीकरण भी लगातार हो रहा है और अनुशासित तरीके से हो रहा है। तो एक बहुत अच्छे माहौल में शहर में बाबा बर्फानी का ये पर्व बना हुआ है और इस दौरान आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गाड़ी की दोनों मार्गों की और रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 9153 रही। बड़ी संख्या है ये, जहां बालताल मार्ग की तरफ 3429 तीर्थयात्री रवाना हुए, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग की तरफ लगातार तीर्थयात्रियों की प्राथमिकता रहती है और इस मार्ग से आज 5724 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। वहीं जत्थे में शामिल पुरुषों की संख्या 6522 रही, महिलाएं 2233, बच्चे 18, साधु 267 और सादगी 112 और साधु बच्चा भी एक शामिल रहा। और आज इस पवित्र अमरनाथ गुफा के दोनों मार्गों की और 359 वाहन ताकि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पहलगाम की ओर 210 जबकि बालताल की ओर 149 वाहन चल रहे हैं। तो एक बड़ा काफिला घाटी की ओर बढ़ रहा है और बहुत अच्छी सुरक्षा के साथ और बहुत अच्छे माहौल में ये घाटी की ओर रवाना हो रहा है। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए,
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थे जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे किस तरह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप और पूरी जम्मू सिटी में जो है उत्साह का माहौल देखने को मिलता है, किस तरह यात्री बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और बता रहे थे कि प्रशासन द्वारा हर वक्त ये कोशिश रहती है कि सभी तीर्थयात्रियों के लिए जो है मुख्तलिफ सहूलियतें दस्तियाब हो। बहुत सारी ऐसी सहूलियतें जिनसे जो है ये यात्रा बड़े आसानी से जो है मुकम्मल होती है और कोशिश यही रहती है कि सभी तीर्थयात्री जो देश के विभिन्न भागों से जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप पहुंचते हैं थकावट से जो है उन्हें दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें उन्होंने योगा की बात की या मुख्तलिफ ऐसे जो पूजा पाठ्स की बात की जहाँ पर सभी तीर्थयात्रियों का मन जो है प्रसन्न रहता है, उनमें नई फूर्ति नई ऊर्जा मिलती है। और सरकार की यही कोशिश है, प्रशासन की यही कोशिश है कि सभी तीर्थयात्रियों को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है, चाहे वो बालटल के मार्ग से हो या पहलगाम के प्राचीन मार्ग से या श्रीनगर के बेस कैंप पांथा चौक में जो सहूलियतें हैं, जगह जगह पर जो है प्रशासन की ये कोशिश है कि सभी तीर्थयात्रियों को जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उनको मैसर हो, वो उनको अवेलेबल हो ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और लोकल प्रशासन जो यहाँ की है केंद्र प्रशासन दोनों मिलकर आम लोग जो है सभी मिलकर इस कोशिश में मुसलसल लगे हुए हैं ताकि सभी तीर्थयात्रियों की जो यात्रा है यादगार रहे, उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि हम किसी और जगह आए हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग, आकाशवाणी शरण की सूचना आप तक बराबर पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एस तारिक पहलगाम से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका।
1: आप सभी का और श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। खुशगवार मौसम, हल्की सी ठंडी के बीच बाबा बर्फानी के परिसीमाओं की आध्यात्मिक यात्रा सफलता और सुखद तरीके से जारी है। बाबा के जय जयकार के नारों और आस्था के साथ आज सुबह 4 बजे उन्होंने आधार सेवक से और निजी अकोमोडेशन में उनके भक्तों पे मुश्तमिल हजारों का जत्था चंदनवारी पहुंच रहे हैं, जहां पंचकरण के प्रक्रिया जारी है। यात्रा पंचकरण करके अपनी अगले पड़ाव फिसलन विशोताप लोजबाग नागरकोटे और बागुन स्टाप के बुलंद बाला रासू से होते हुए शिशनाग और पंचतरनी की तरफ अपनी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं।
0: जी,
1: शिशनाग और पंचतरनी में रात को रुके यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के और बाबा के द्वार की जानेब पेशकदमी शुरू की है। वो थोड़ी देर बाद पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त करेंगे। बताओ, आपको बताता चलूं कि वसीतर मुफाद और सिक्योरिटी टीम को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष पवित्र गुफा जाने के लिए हवाई सर्विस मुअत्तल रखी गई है। इसलिए घोड़ेबान पोनी वाले और दीगर दूसरे लोग यात्रियों की खिदमत के लिए

पेश है। इधर जम्मू के भगवती नगर आदात शहर से 9153 यात्रियों का गहरवा जत्था घाटी की ओर बढ़ रहा है। ट्रांजिट क्लब काजीगुंड तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचकर जहां से बल्दर और पहलगाम के लिए अलग अलग जत्थे रवाना कर दिए जाएंगे, जिसमें पहलगाम राज्य रूट के लिए 210 छोटी बड़ी वाहनों में 5724 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी

0: प्रशासन के द्वारा नुनवन बेस कैंप एवं यात्रा ट्रैक पर यात्रियों के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध रखी गई है एवं बिजली, पानी, स्वच्छता, भोजन तथा संचार व्यवस्था भी उपलब्ध रखी गई है। दो प्रमुख आरजी बेस अस्पतालों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यात्रा मार्ग तथा कैंपों में मेडिकल सुविधा के साथ बिल्कुल मौजूद है। और कहा गया है कि अगर किसी भी यात्री को जो पहाड़ी चढ़ते हुए सांस की शिकायत हो तो फौरन वो जो सुविधा वहां रखी गई है, मेडिकल सुविधा रखी गई है, उनसे रब्ता करें। यात्रियों को आवश्यक उपदेश और संपर्क जानकारी के लिए जगह जगह पे साइन बोर्ड्स, होर्डिंग, हेल्प डेस्क रखे गए हैं। अगर किसी को भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन उनसे रब्ता करें और इनका पालन करके यात्री अपने सफर को आसान और महफूज बना सकते हैं। सरकारी अधिकारी के एवं हजारों सेवादार यात्रियों की सेवा में पेश है। और आपको ये भी बताता चलूं कि 13 जुलाई से अब तक जो कल शाम तक जो आंकड़े दर्शन के हमें मिले हैं वो 2000 से अधिक पार कर चुका है, 2,00,000 से अधिक पार कर चुका है
1: जी।
0: और इस तादाद के हिसाब से अभी पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष 28% जो यात्रा है आने हुए ज्यादा है। तो मौसम विभाग की सोचना तो बहुत जरूरी है। इसके मुताबिक यात्रा ट्रैक में मौसम सुहाना और खुशगवार है, मगर आज आलूद मौसम रहेगा। सुबह के वक्त हल्की और मुख्तसर बारिश मुतवक्को है, जिसके बाद दोपहर में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि इस समय 14 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज है। शाम के वक्त 1-2 मुख्तसर बारिश मुतवक्को है, इसके बाद मौसम जुजवी तौर पर उब्र आलूद रहेगा। रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जोबूता पवित्र गुफा जाने की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखी गई है। प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्था और तमाम स्थानीय लोगों की सेवादारी पर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। आशा है कि बाबा के द्वार दर्शन पर आने वाले शिव भक्तों की मनोकामना पूरी और सुखद तरीके से ये यात्रा जारी रहे जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओ, ये थे एस तारिक, पहलगाम से अपडेट दे रहे थे। महकमे मौसम याद से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर जो है वक्फे से हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। जैसा कि बता रहे थे तारिक कि आज जो है मौसम अब्र आलूद ही रहेगा और सुबह प्रातः जो है नुनवन बेस कैंप से तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 2,00,000 से जायद जो है अधिक जो है तीर्थ यात्री अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा 2026 का 11वां जत्था वादी की ओर रवाना किया गया। यह जत्था जो है 359 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर रवा दवा है, जिनमें कुल मिलाकर 9,153 श्रद्धालु पहलगाम और बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना सभी तीर्थ यात्रियों को कि जो पूरी यात्रा है सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालिल के मार्ग पर आप हमें एफएम बालटल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआर एवं आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुशगवार मौसम में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक तीर्थ यात्रियों का एक साथ मिलना, बाबा भोलेनाथ के नारे, तीर्थ यात्रियों में उत्साह, ये सब मंजर जो है आपको एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण, वाकई हम सबको एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाती है। श्रोताओं, पवित्र गुफा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान

दोनों मार्गों पर। इस सफ़र में जो है आपको प्रकृति की सुंदरता, शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते आपका मन जो है प्रसन्न रहता है, आप में नई फूर्ति, नई ऊर्जा आती है और आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, आप में सकारात्मकता आती है। शिव जी से यही प्रार्थना, आपकी ये पूरी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: हाईवे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है, और जो आज सुबह 3 और 3:15 के दरमियान जो काफले जम्मू से बाल तरु पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं, वो इस वक्त एक काफला तो जो बालतल के रास्ते जाना है, बहुत सवेरे निकलता है जम्मू से, तो वो बानहाल पहुंचना शुरू हो गया है। इसमें 149 गाड़ियां हैं, 3,429 यात्री हैं। तो अभी ये गुजर रहा है यहाँ से बानहाल मार्केट से काफला, तो और इसका जो मंजिल अगली है वो है जो सुबह जम्मू का लास्ट जो इनका यहाँ पर लंगर पॉइंट है बानहाल में
0: जी।
1: लास्ट पड़ाव है बानहाल जम्मू डिवीजन का बानहाल, तो वहाँ पर इनको रोका जा रहा है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद इन्हें आइंदा 1-1.5 घंटे में यहाँ से कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। इसी तरह पहलगाम का जो कॉन्वॉय है, अभी ये चिनानी टनल क्रॉस करके रामबन आ चुकी है, और यहाँ पर चंद्रकूट में इनका स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हैं। रोजाना की बुनियादों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जैसे DC रामबन हो, SSP रामबन हो, SP ट्रैफिक हो, CMO हो, तो वो बिल्कुल इंतजार में होते हैं, सुबह ही खड़े खड़े होते हैं सुबह से ही यात्रियों के इंतजार के लिए, और उनके जो इंतजाम है उनका जायजा लिया जाता है बाजाबता रोजाना की बुनियादों पर। तो पहलगाम का जो काफला है 210 गाड़ियों पर है, 5,724 यात्री इनमें सवार हैं, तो वो भी मतलब उसके बाद वहां से उनका नाश्ता जो है वो चंद्रकूट में होना, और बालतल वालों का नाश्ता यहाँ बानहाल के लांबर ग्राउंड में होना है। कुल मिलाकर 9,153 यात्री है, बहुत बड़ी संख्या है, 359 गाड़ियों में आज ये जम्मू से आए हैं। तो मौसमी बात कहेंगे तो बादल है, अब आलूद है, कल से ही बादलों का सिलसिला, कल दिन भी यही सिलसिला रहा और आज भी, और मौसम अगर कहेंगे मजबूरी तौर तो इस सुबह के अवकात में बहुत खुशगवार है, और उसका मजा और आनंद भी जो श्री अमरनाथ यात्री वो भी ले रहे हैं। इस दौरान जो डाउन कानवाई में कश्मीर से जो ट्रैफिक अब जम्मू की तरफ जा रहा है बालतल से, उधर से भी आज बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही है, 127 गाड़ियों में 4,126 यात्री सवार हैं, जिसमें मेल जो है मर्द जो यात्री हैं वो 2,981 हैं, जबकि फीमेल यात्रियों की तादाद 931 है, इसके अलावा बच्चे हैं 198 साधु हैं और 27 साध्वियां हैं।

0: कुल मिलाकर ये 4,127 जो यात्री हैं, 127 गाड़ियों में अभी ये कश्मीर डिवीजन से गुजर रहे हैं, अनंतनाग से पीछे ही है, तो कुछ वक्त के बाद ये भी बानहाल पहुंचेगी और इनका जो जो ये बालतल वाली कानवा है, इनके खाने पीने का जो इंतजाम वो बानहाल में रखा गया है, जो पहलगाम से आएगी उसके लिए जो इंतजाम है वो चंद्रकूट के यात्रा निवास पर रखे गए हैं। फिलहाल जो मौसमी सूरतहाल है, मतलब बादल हैं और बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से, खासकर जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी उसके मुताबिक जो चिनाब वैली के इलाके हैं उनमें जो खासकर किश्तवाड़, डोडा और रामबन, इनमें भी बारिशों की अच्छी बारिशों दरमियाना दर्जे तक की बारिशों के हल्की से दरमियाना दर्जे तक की बारिशों की पेशन गोई का इम्कान जाहिर किया। हालांकि ये पेशन गोई पिछले कल भी थी लेकिन कल बारिशें नहीं हुई, अलबत्ता परसों बारिशें हुई थी, लेकिन अभी जो बादल हैं बिल्कुल बादलों का जो पूरा जमावड़ा है, तो उम्मीद है कि शायद आगे चलकर जो दोपहर तक बारिशों के मतलब इम्कान जाहिर हो रहे हैं, मतलब लग रहा है कि बारिशें मत होंगी हल्की हल्की। तो फिलहाल जो ट्रैफिक चल रहा है और आइंदा हम एक दो घंटों में देखेंगे कि पहला काफला कश्मीर की तरफ रवाना होगा और उसके बाद यहाँ बानहाल से दूसरा काफला भी वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा और सख्त सिक्योरिटी जो बंदोबस्त है वो इन प्लेस है, उसमें कोई वो किसी किस्म की कमी नहीं और यात्रा जो है बिल्कुल कुछ असलोबी के साथ बगैर किसी मतलब रोकथाम के, बगैर किसी रुकावट के या बगैर किसी परेशानी के जो सफर है बिल्कुल कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।
0: तो
1: ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट्स दे रहे थे। आकाशवाणी क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं, आइए समाचार सुनते हैं।
1: अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण

0: पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता युरियाले माओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पंजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस

0: समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकुओक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और

0: न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. according to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai.

0: Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand, departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत करने के बाद तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनत और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे की एक नुमाया तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दोतरफा तिजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक काबिले एतमाद दोस्त करार दिया। न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के रोल को सराहा और वजीर आजम मोदी की क्यादत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम लक्सन की बेहतरीन मेजबानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज किया है। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के वजीर आजम के न्यूजीलैंड के दौरे को 40 साल गुजर चुके हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले दौरे में इतना तवील वक्फा नहीं होगा।
2: ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी

0: सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे से तिजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तालीम, इख्तरा और अवामी रवाबित समेत मुतअद्दिद शोबों में तआवुन को फरोग मिला है और इस दौरे से अहम और मुस्बत नतायज

0: और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन अफराद ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की है और जिनकी गफलत इस हादसे का सबब बनी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अफसोसनाक हादसा कल उस वक्त पेश आया जब 36 अफराद, जिनमें अमले के 4 अरकान भी शामिल थे, को ले जाने वाली तेज रफ्तार कश्ती रत्नगोई जजीरे के करीब अचानक एक बड़ी समुद्री लहर की जद में आकर उलट गई। मकामी हुकाम ने 21 अफराद को बहिफाजत बचा लिया, ताहम 15 भारतीय सयाह, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, जान की बाजी हार गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के फू कुआक जजीरे के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हादसे में 15 भारतीय शहरियों की मौत हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो इस अफसोसनाक कश्ती हादसे से बेहद गमजदा हैं। वजीर खारजा ने महलुकीन के अहल खाना से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट अमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा कशाम, बंदर अब्बास और सिरिक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक अपनाए हुरमुस को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि खित्ते में अमरीका की दखल अंदाजी बंद नहीं हो जाती। सिपाही पासदारा ने इनकलाब की जानिब से एक इंतबाही वार करने के बाद जब जहाज रुक गया तब ये ऐलान किया गया। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ सालिसी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ओमान ने आबनाए हुरमुस से जहाजों के गुजरने के लिए 2 अलहदा रास्ते तजवीज किए हैं, एक ईरानी समंदर से और दूसरा ओमान समंदर से। इससे पहले को बातचीत में तेहरान से इसी तरह की तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। न्यूज डेस्क से जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुजव्वजा एक मुल्क एक इंतखाब बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की 2 रोजा मुशावरत गोवा में इख्तिताम पजीर हो गई। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने रियासती हुकूमत, सियासी पार्टियों, कानून साजों, कानून के माहिरीन, अवामी शोबे के इदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया से तबादला ख्याल किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आईन के 129वें तरमीम बिल 2024 और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुतालिक कानून तरमीम बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने एक साथ इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर गोवा में 2 रोज़ा मुशावरत मुकम्मल की। पहले दिन कमेटी ने वज़ीर आला प्रमोद सावंत, मारूफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं, आईनी माहिरीन, रियासती चुनाव कमीशन और गोवा यूनिवर्सिटी के हुक्काम से मुलाकात की। दूसरे दिन यानी कल कमेटी ने गोवा कानून साज असम्बली के स्पीकर, अपोजिशन के लीडर और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कानून साज असम्बली के मेम्बरान से बातचीत की। इससे पहले अपने दौरे के दौरान कमेटी के चेयरमैन और पार्लियामेंट के मेम्बर पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ इंतखाबात कराने से हुक्मरानी मजबूत होगी, अखराजात में कमी आएगी और बार बार इंतखाबात कराने से पैदा होने वाली रुकावटों में कमी आएगी। उन्होंने इस बात को वाजे किया कि एक मुल्क एक इंतखाब का मतलब ये नहीं है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन पोलिंग हो, लेकिन लोकसभा और असम्बली इंतखाबात दोनों एक साथ मरहलेवार अंदाज में 5 साल में एक बार कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले तमाम शराकत दारों से मशवरे ले रही है। कमेटी का अगला दौरा लखनऊ का होगा। महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक 405 करोड़ रुपए की मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो अपने पार्लियामानी हल्के गांधीनगर में एक वसी शजरकारी मुहिम का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गांधीनगर लोकसभा हल्के को मुल्क के 70 हल्कों में शामिल करने के लिए एक बड़े शजरकारी मनसूबे का आगाज किया है।

इस प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओ, आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 11वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 359 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 9,153 श्रद्धालु तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। तीर्थ यात्रियों में 3,429 श्रद्धालु बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5,724 श्रद्धालु शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर 9,153 श्रद्धालु राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर इस वक्त खुशगवार मौसम में बड़े उत्साह के साथ बानीहाल की ओर चल रहे हैं, जिनमें से कुल मिलाकर 6,522 पुरुष, 2,233 महिलाएं, 18 बालक, 267 साधु, 112 साध्वी, एक साधु बालक शामिल है। आपको याद दिलाते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 11वां जत्था बड़े उत्साह के साथ NH40 पर इस वक्त घाटी की ओर रवा दवा है। ये तीर्थ यात्री लगभग 12 बजे के करीब लंबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है इस पूरे जत्थे का विभाजन होता है। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक लाया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को जो है नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंचाया जाता है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो आपको चंदनवाड़ी से होते हुए पिसुटाप, जोजीबल, नागाकुटी, शेषनाग, महागुनु स्टॉप, पंचतरनी और उसके बाद जो है संगम एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर दोनों रास्तों से चल रहे तीर्थ यात्री एक साथ मिल जाते हैं। बालटल के मार्ग से आप दोमेल ब्रारी मार्ग से होते हुए संगम पहुँच जाते हैं। संगम से पवित्र गुफा तक जो है आपको 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस सफर में जो है आप दोनों तीर्थ यात्री, दोनों रास्तों से आ रहे यात्री एक साथ मिल जाते हैं। दोनों रास्तों पर आपको कई एक बार खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है। पहले इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। जैसा कि आज मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार भी दोनों मार्गों पर वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है अपने साथ गर्म अलबुसात, छाता, वाटरप्रूफ बैग्स, रेनकोट्स, विंडचीटर साथ रखें ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और जो भी सरकार द्वारा आपको एडवाइजरीज मिली है उन्हें आप फॉलो करते रहे, उनका आप पालन करते रहे, उससे जो है आपकी यात्रा आसानी से गुजरेगी, आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। आपको जगह जगह पर दोनों मार्गों पर सरकारी अधिकारी मिलेंगे जो आपकी सहायता के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। स्थानीय प्रशासन, लोकल नागरिक आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप बस उनसे कॉपरेट करें ताकि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक के सफ़र को जो है आपको आसानी हो जाए, आपको किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी की भी यही कोशिश है कि क्षण क्षण की सूचना,
सनसेट के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे।

और शिव जी से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है वो सफल, सुखद और मंगलमय हो। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम रिजवान गांदरबल से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है गांदरबल से, आइए सुनते हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: जी
1: जी अगर हम बालतल मार्ग की बात करेंगे तो पूरे क्षेत्र में वातावरण बेहद सुहावना एवं खुशनुमा बना हुआ है। रात भर वर्षा होती रही जिससे अच्छी संभावना बनी हुई है। इस बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से सफलतापूर्वक बिना किसी बाधा के एवं शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। ठंडी एवं ताजा हवाओं का आनंद लेते हुए आज बालतल बेस कैंप से 10,418 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई, जिसमें 8,556 पुरुष, 1,574 महिलाएं, 80 बालक बालिका, 20 साधु, 17 साधियां, 4 ट्रांसजेंडर एवं 167 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। हर हर महादेव का पवित्र नाथ करते हुए ये बाबा बर्फानी के भक्त आज सुबह 4 बजे से ही ऊंचे पर्वतों के बीच गुफा की तरफ रवाना हुए। और अगर हम श्रद्धालुओं के वापस आने की बात करेंगे तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो श्रद्धालु वो पवित्र गुफा पहुंचकर माथा टेकते हैं, शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं। बीती रात 10 बजे तक 23,746 श्रद्धालु बाबा बर्फानी ये गुफा का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु में 16,020 पुरुष, 7,020 महिलाएं, 230 बालक बालिका, 130 साधु, 8 साधियां, 11 ट्रांसजेंडर एवं 327 सुरक्षा कर्मी भी थे। शिवलिंगम का दर्शन करके बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु ने इस वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि जिला प्रशासन गांदरबल ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है। उन्होंने चिकित्सा विभाग की जानिब से किए गए व्यवस्थाओं को लेकर आकाशवाणी को बताया कि जगह जगह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रखी है। और श्रोताओं, आप जानते हैं कि ऊंचे पर्वतों के बीच जो कठिन रास्ता, अगर खाली 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी के बाइस श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ताहम इस वर्ष चिकित्सा विभाग ने जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाफिर मकदार में मुहैया रखे हैं, वाफिर मकदार में। और जहाँ कहीं भी यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी लाहक होती है तो उन्हें ऑक्सीजन वही पहुंचाया जाता है। इस तरह उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर इत्मीनान का इजहार किया और वो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं। यहाँ वो या तो रात भर या दूसरे रोज भी कायम करते हैं और पूरे क्षेत्र का माहौल देखकर रात्रि विश्राम के बाद तुम सवेरे अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना होते हैं। बालतल बेस कैंप में जिला प्रशासन गांदरबल ने जहां व्यवस्थाएं रखी हैं और इसके साथ साथ जो देश के विभिन्न भागों से बहुत सारे लंगर वाले यहां आए हैं, उन्होंने भोजन और गर्म पानी के अलावा दीगर व्यवस्थाएं भी यहां पे यात्रियों के लिए मयसर रखी है। और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि 5 बजे के बाद जो भी यात्री चाहे बालतल बेस कैंप से दर्शन करके वापस आए या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं तो 5 बजे के बाद शादीपुरा ट्रांजिट कैंप एवं ट्रांजिट कैंप मणिगांव से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इन यात्रियों को रात भर यही रुकना पड़ता है। तो शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में गुजश्ता रात 10 बजे तक 802 यात्री दाखिल हुए, जिनमें 508 पुरुष, 269 महिलाएं, 25 बालक बालिका शामिल थे। 56 वाहनों में सवार ये यात्री रात 10 बजे तक ट्रांजिट कैंप शादीपुरा पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को भी सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी गई। इस तरह देर शाम गए तक जो यात्री ट्रांजिट का मनगांव पहुंचे उन्हें भी रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप और जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी गई। अगर

0: यात्रियों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो इस वर्ष काफी मात्रा में देश के विभिन्न भागों से यात्री बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं और शिवलिंगम के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की तरफ जाकर सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: धन्यवाद।
1: श्रोतो, ये थी रहीम रिजवान, गांधरबल से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है प्रशासन द्वारा जगह जगह पर तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सुविधाएं जो है प्रदान की गई है। कोशिश सरकार की यही है कि दोनों रास्तों पर जो है तीर्थ यात्रियों को दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो हम सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, कोशिश करें कि आप उन्हीं गाइडलाइंस पर चले। अगर आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना है, कोई भी अड़चन है, आप जो है हेल्पलाइन डेस्क के पास जाकर, उन काउंटर्स पर जाकर, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। वह आपको उस दुविधा के बारे में जानकारी देंगे, आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए जो भी ज़रूरत होगा वो आपके लिए वो मुहैया कराएंगे। हेल्पलाइन डेस्क, मेडिकल काउंटर्स, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर दोनों रास्तों पर आपके लिए रखी गई है। प्रशासन की मुसलसल यही कोशिश है कि भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है आपको किसी भी अड़चन का सामना ना करना पड़े। स्थानीय नागरिक सरकार के साथ मिलकर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। देश के विभिन्न भागों से बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जो आपकी सेवा में बहुत सारे ऐसे लंगर सुनने रखे हैं, ऐसे काउंटर्स बनाए हैं जो पूरी यात्रा के दौरान आपको काम आएंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आज जो है इस वर्ष दोनों मार्गों पर आपको जब आप खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं जहां आपको ऑक्सीजन की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वहां आपके लिए जो है मेडिकल काउंटर्स रखे गए जहां पर आपको ऑक्सीजन फराहम किया जाता है, ऑक्सीजन मशीन्स को जो है सिलेंडर्स को जो है आपके लिए रखा गया है ताकि आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका सेहत जो है ठीक नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, नीचे ही कोशिश करें कि आप काउंटर से राबिता कायम करें, डॉक्टर से राबिता कायम करें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप कोशिश करें कि पहले ही आप जो है डिजिग्नेटेड काउंटर्स पर जा कर के अपना इलाज कराएँ ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी की भी यही मुसलसल कोशिश कि क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक तो पहुंचाते रहे, विशेष प्रसारण आपके लिए सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हमारे संवाददाता जगह जगह के अपडेट्स आप तक तो पहुंचाते रहते हैं ताकि इन अपडेट्स से आप फ़ायदा उठा सके। आपके लिए हेल्पलाइन डेस्क जो है बनाए गए हैं, प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, आप उनसे राबिता कायम करें अगर आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना करना पड़े। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग, आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इमरान नायकू पांथा चौक ट्रांजिट कैब से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स उनके पास, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, थैंक यू सो मच। अमरनाथ जी यात्रा 2024 जारी है और ये 57 यात्रा अभी बड़े ही पीसफुल तरीके से जारी है। और जहां तक आज दिन का ताल्लुक है, श्रीनगर में आज सुबह से हल्के बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन वहीं ठंडी हवाएं भी चल रही है और कुल मिला के आज मौसम थोड़ा सा भी साजगार ही है। श्रीनगर में और अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया और कल शाम यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के दो जत्थे जो पहुंचे थे, उन्होंने रात को यहाँ पे कयाम किया और इनमें मर्द, खवातीन, साधु, साध्वी भी शामिल थी। और इस सिलसिले में यहाँ कल शाम को उनका स्वागत किया गया और

0: पूरी रात उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया, नाइट स्टे किया, और जहाँ उनके लिए सारी सुविधाएं रखी गई थी, और आज यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। और पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि जो यात्री श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप पांथा चौक में पहुंच रहे हैं, और यहाँ से उन्हें दोनों रूट्स की तरफ रवाना किया जा रहा है, ताकि वो पवित्र गुफा का जो दर्शन है वो अच्छी तरह से कर सके, खुश असलूबी के साथ कर सके। और इस सिलसिले में यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट या कानवाई के साथ उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। ओवरऑल श्रीनगर के ट्रांसिट कैंप में हम देख रहे हैं कि यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की सहूलियात रखी गई है, जैसा कि हम हर दिन इस सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं। और न सिर्फ लंगर, कम्युनिटी किचन या फिर बाकी खाने पीने की चीजें या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बल्कि जितनी भी बेसिक अमेनिटीज फैसिलिटीज होती है वो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, वो यहाँ पे डॉक्टर्स तैनात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा बाकी महकमों के भी यहाँ जो अहलकार है वो तैनात है, सैनिटेशन वर्कर्स श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और बिजली का बिल्कुल यहाँ पे बेहतर निज़ाम किया गया है, 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी रखी गई है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो इस यात्रा ट्रांजिट कैंप में श्रीनगर में यात्रियों के लिए रखी गई है, और यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ओवरऑल हम यात्रियों से बात भी कर रहे हैं कि इस यात्रा को लेके जो शहर में पहुँच रहे हैं और इस ट्रांजिट कैंप में उनके लिए जो फैसिलिटीज़ है उस पर उनका फीडबैक, और जो यात्री यात्रा करके आ रहे हैं और उनसे भी बीच बीच पे हम फीडबैक ले रहे हैं, और खासकर वो यात्री जो पहली बार आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस या पिछले कई सालों से यहाँ पहुंचे हैं, और उनसे हमारा यही सवाल रहता है कि क्या कुछ नया या क्या कुछ चेंजेस या तब्दीली आप देख रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों का जो फीडबैक है अरेंजमेंट्स को लेके या बाकी फैसिलिटीज को लेके, वो काफी अप्रिशिएट इस पर कर रहे हैं, और खासकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का या खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस तरीके से वो ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, या लंगर्स कायम करने वाले जो लोग जो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, या ओवरऑल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या उवन की यहाँ की लोकल कम्युनिटीज का, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यात्रा बड़े ही खुश असलूबी से जारी है। और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बार बार अमरनाथ जी यात्रियों से भी अपील कर रही है कि यात्रा के साथ साथ वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करें, सो दैट किसी तरह की कोई यात्रियों को दिक्कत ना आए, कोई परेशानी उनको ना हो जाए। और जिस तरीके से रिसेंटली गवर्नमेंट या LG साहब ने भी कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी हो रही है उस एडवाइजरी पर यात्री जो है वो फॉलो करके अपना सफर जो है कश्मीर की तरफ बनाए। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी तक यात्रा जो है इंतहाई खुश असलूबी पुरअमन तरीके से जारी भी है, और खासकर श्रीनगर शहर में यात्री यहाँ के इंतजाम या बाकी चीजों को लेके इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए। श्रोताओ, ये थे इमरान नाइको, पांथा चौक श्रीनगर ट्रांजिट कैब से बात कर रहे थे। जैसा कि इस ट्रांजिट कैब में भी जो है रात भर यात्री रहते हैं, आराम करते हैं, और उनके भोजन का अहतमाम किया जाता है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है जिनकी आपको ज़रूरत रहती है, क्योंकि पूरे रास्ते में जो है आप सफ़र कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है आप जब आप ट्रांजिट कैब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपके लिए प्रशासन द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ मैसर रखी जाती है जिससे आपको आराम मिलता है। जैसा कि हमारे संवाददाता इमरान भी बता रहे थे, इस बार भी जो यात्री हैं जो नए आज पहली दफ़ा यात्रा पे आए हैं, उनसे जब आप फीडबैक लेते हैं तो वो बेहद खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं, और सरकार द्वारा उठाए गए इकदाम से खुश दिखाई दे रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि इस बार जो है सुरक्षा को लेकर, सुविधाओं को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, भोजन को लेकर, खान पान को लेकर, ऐसी बहुत सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनसे जो है आपको लेस किया जाता है, उनकी दिक्कत आपको महसूस नहीं रहती है। दोनों रास्तों पर जो है जगह जगह पर आपको ऐसे कैंप्स मिलेंगे जहां पर आपकी सुविधा

के लिए सरकार और स्थानीय नागरिक जो है मिलकर काम कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता आपको याद दिलाते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 3,114 तीर्थ यात्रियों ने आज पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 2,370 पुरुष, 615 महिलाएं, 68 बालक, 9 साधु, 8 ट्रांसजेंडर, 44 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। कुल मिलाकर ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में ठीक 9:25 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार सुनते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM बालटल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर अगर आप जा रहे हैं तो आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 11वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 359 छोटे बड़े वाहनों में 9153 श्रद्धालु आज घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें से 3429 श्रद्धालु बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर भेजे जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5724 श्रद्धालु शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। 359 छोटे बड़े वाहनों में 6522 पुरुष, 2233 महिलाएं, 18 बालक, 267 साधु, 112 साध्वी, एक बालक साधु शामिल है। कुल मिलाकर 9153 श्रद्धालु राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त रवा दवा है। कुछ ही घंटों बाद काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंचकर जो है इस जत्थे का जो है विभाजन होगा। एक हिस्से को ट्रांजिट कैब पांथा चौक श्रीनगर पहुंचाया जाएगा, जिन्हें बालटल के मार्ग से दर्शन करने जाना है। वहीं दूसरे हिस्से को जो है नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंचाया जाता है। यह जत्था जो है पहलगाम के प्राचीन मार्ग से होते हुए चंदनवाड़ी, पिसू टॉप, जोजीबल, शशनाग, महागुण स्टॉप, पंचतरनी संगम से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंच जाता है। संगम एक ऐसा स्थान जहां पर दोनों रास्तों से चल रहे तीर्थ यात्री एक साथ मिल जाते हैं। संगम से पवित्र गुफा तक जो है 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यूं जो है आप पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको जो है जगह जगह पर दोनों मार्गों पर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है आपको प्रशासन के अधिकारी मिलेंगे, प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम देखने को मिलेंगे। ये इकदाम पवित्र सफर में जा रहे तीर्थ यात्रियों के लिए उठाए जाते हैं। गर्ज यही होता है कि सभी तीर्थ यात्री स्वस्थ और प्रसन्न तरीके से इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां, शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण जो है वाकई तीर्थयात्रियों को एक अलग ही एहसास दिलाता है। श्रोताओं, ये यात्रा जो है केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषणकारी वस्तुओं का उपयोग कतई ना करें, गो ग्रीन यात्रा का ख्याल रखें और कोशिश करें कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश आपको दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करते रहे, ताकि पूरी यात्रा के दौरान जो है आप आसानी से पवित्र गुफा तक पहुंच पाए और सरकार द्वारा जो भी काउंटर्स बनाए गए हैं उनका आप इस्तेमाल करें, उनका आप उपयोग करें, ताकि आपके जो यात्रा है दोनों मार्गों से आसानी से मुकम्मल हो पाए। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुंचाते रहेगा।

ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 3000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 2370 पुरुष, 615 महिलाएं, 68 बालक, 9 साधु, 8 ट्रांसजेंडर, 44 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको बताते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 5000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3970 पुरुष, 1100 महिलाएं, 103 बालक, 15 साधु, 8 ट्रांसजेंडर, 62 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 5258 तीर्थ यात्री ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। वही बालतल से जो डाउन कॉन्वॉय है वो इस वक्त रवा दवा है, जो मुख्य ओर चल रहे हैं। पहलगाम से भी जो यात्री दर्शन प्राप्त कर चुके हैं वो भी वापसी की ओर कॉन्वॉय में चल रहे हैं। दोनों मार्गों पर जो है तीर्थ यात्री जिन्होंने पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं वो नीचे की मार्ग की ओर वापस आ रहे हैं। मौसम विभाग की ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों मार्गों पर, बालतल और पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर, हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। वही जम्मू से लेकर पहलगाम तक भी जो है बीच बीच में आपको दरमियाने से तेज दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी। सभी तीर्थ यात्री इस वक्त बड़े उत्साह के साथ NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद

0: ये जत्था काजीगुंड पहुंचने वाला है। आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 11वां जत्था घाटी की ओर भेजा गया। 359 छोटे बड़े वाहनों में ये तीर्थ यात्री बालटल और पहलगाम के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर 9153 तीर्थ यात्री, जिनमें से 3429 श्रद्धालु बालटल के मार्ग से, 5724 तीर्थ यात्री पहलगाम के प्राचीन मार्ग से शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश, यही निवेदन कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, पूरी यात्रा के दौरान जो है आप इन एडवाइजरीज को फॉलो करते रहे, ऑनलाइन पंजीकरण करें, RFID कार्ड हासिल करें, उसका उपयोग करें और ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं रहता है। आप कोशिश करें कि पहले ही अपने साथ अम्ब्रेला, विंड चीटर, वाटरप्रूफ बैग्स, वाटरप्रूफ कोट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि लेसेस वाले शूज़ का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, लेसेस वाले शूज़ का ही आप इस्तेमाल करें और एक समूह में यात्रा करें, किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, सरकार द्वारा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए। और हाँ, जब भी आप यात्रा करें, एक समूह में यात्रा करें, ग्रुप में यात्रा करें और अपने साथ अपना RFID कार्ड पहने रखें और अपने साथ अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपना नंबर किसी पन्नी पर लिखकर अपने साथ रखें। अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना है, नज़दीकी काउंटर पर जाकर के आप वहाँ से सहायता हासिल कर सकते हैं। आपके लिए दोनों मार्गों पर जगह जगह पर जो है सरकारी अधिकारी मिलेंगे, हेल्पलाइन डेस्क मिलेंगे, स्थानीय नागरिक मिलेंगे जो आपकी सहायता के लिए आपकी सेवा में लगे रहते हैं। उनसे आप राबिता करें ताकि आपकी मुश्किल का जो है हल निकल पाए। और जब भी आपको लगे कि आपका सेहत ठीक नहीं है, ऊपरी क्षेत्र की ओर ना जाए, नीचे ही कोशिश करें, डॉक्टर से बात करें, उनसे मशवरा ले, उसके बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र का सफ़र करें। एक बार फिर आपसे यही निवेदन कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, जिस भी क्षेत्र से आप यात्रा के लिए निकलते हैं पहले ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी जो लवाजमात है वो पहले ही तैयार रखें, ताकि पूरी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी की भी मुसलसल यही कोशिश है कि आपको जो है क्षण-क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहे। आकाशवाणी क्षण-क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।
1: हलुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4-5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 1446 पे कॉल करिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़ी उत्साह के साथ जारी है। आज यात्रा का 11वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया, जो सभी तीर्थयात्री कुछ ही घंटों बाद काजीगुंड लांबरगाउंड पहुंचने वाले हैं। श्रोताओ, विशेष प्रसारण के तई अगर आपका कोई विचार हो, अपना अनुभव, कोई प्रश्न, आप ज़रूर हमारी टीम के साथ साझा करें। हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9596990954। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुने, 9596990954 पर आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न हमारी टीम के साथ साझा करें। आप ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। विशेष प्रसारण के तई आपका कोई विचार, कोई प्रश्न हो, हमारी टीम के साथ ज़रूर साझा करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुशगवार मौसम में इस वक्त रवा दवा है। ताज़ा सूचना के अनुसार 5000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 3970 पुरुष शामिल है, 1100 महिलाएं, 103 बालक, 15 साधु, 8 ट्रांसजेंडर, 62 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 5000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अभी तक शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, अभी तक ताज़ा सूचना के अनुसार आज पवित्र गुफा में 7,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 5,686 पुरुष, 1,625 महिलाएं, 150 बालक, 23 साधु, 8 ट्रांसजेंडर, 84 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 7,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आज शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वहीं ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांजिट कैब पांथा चौक श्रीनगर से बालतल से कुल मिलाकर 37 छोटे बड़े वाहन वापस आ रहे हैं, जो दर्शन करके जम्मू की ओर रवाना होंगे। आपको बता दें, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 11वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया, जिनमें कुल मिलाकर 9,153 तीर्थयात्री 359 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर रवा दवा है, जिनमें 6,522 पुरुष, 2,233 महिलाएं, 18 बालक, 267 साधु, 112 साध्वी, 1 बालक साधु शामिल है। इन तीर्थयात्रियों में 3,429 तीर्थयात्री बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5,724 तीर्थयात्री बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में

अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4-5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। दोनों मार्गों पर तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर चल रहे हैं। मौसम विभाग की ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर वक्फे से हल्के से दरमियानी दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का पता नहीं रहता। सभी तीर्थयात्रियों से यह निवेदन कि आप पहले ही अपने साथ

0: अम्ब्रेला, विंड चीटर, वाटरप्रूफ बैग्स, गर्म मलबूसात, और भी बाकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि ऊपरी क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कोशिश करें एक समूह में यात्रा करें, कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ जो है वहाँ ना जाए। और हाँ, अपना RFID कार्ड पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें, और जो भी प्रशासन द्वारा एडवाइजरीज आती है उनका पालन करते रहे, उससे जो है आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है आपको जगह जगह पर प्रशासन के अधिकारी मिलेंगे, स्थानीय नागरिक मिलेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। देश के विभिन्न भागों से बहुत सारे ऐसे शिव भक्त आए हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। सभी की ये कोशिश कि तीर्थ यात्रियों का, शिव भक्तों का ख्याल रखा जाए, उनकी सेवा की जाए। आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप भी कॉपरेट करें, जितना हो सके आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं, और जो भी मुश्किल आपको दरपेश हो बेझिझक आप हेल्पलाइन डेस्क पर जाए, वहाँ बैठे अधिकारियों के साथ बात करें, उनसे मशवरा करें, उनसे अपनी मुश्किल साझा करें, ताकि यात्रा आपकी जो है आसानी से मुकम्मल हो पाए। आकाशवाणी की भी यही कोशिश है कि हम आपकी यात्रा को जो है आसान बना सके, क्षण क्षण की सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।
1: भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
2: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, आकाशवाणी शरण की सूचनाएँ आप तक पहुँचा रहा है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 11वां जत्था जो है अभी अभी काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच चुका है। काजीगुंड से होते हुए जो है इस जत्थे का विभाजन होता है। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को जो है नुनवन बेस कैंप पहलगाम लिया जाता है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक कुल मिलाकर 10,000 से अधिक तीर्थ

0: यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 7,396 पुरुष, 2,275 महिलाएं, 205 बालक, 25 साधु, 8 ट्रांसजेंडर, 101 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है अभी तक शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वही आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थ यात्रा 2026 का 11वां जत्था जो है वादी की ओर रवाना किया गया। ये जत्था 359 छोटे बड़े वाहनों में अभी अभी काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच चुका है। इनमें से 5,724 तीर्थयात्री पहलगाम के प्राचीन मार्ग से शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। वही बालतल के मार्ग से 3,429 तीर्थयात्री बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। कुल मिलाकर 9,153 तीर्थयात्री आज घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 6,522 पुरुष, 2,233 महिलाएं, 18 बालक, 267 साधु, 112 साध्वी, 1 बालक साधु शामिल है। कुल मिलाकर जो है तीर्थ यात्रा बड़े उत्साह के साथ जारी है। मौसम विभाग की ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम अबरालूद ही रहेगा। हल्की से दरमियाने दर्जे की वर्षा की भी संभावना जताई गई है। ताहम सभी तीर्थयात्रियों से ये निवेदन कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, अपने साथ विंड चीटर, अम्ब्रेला, गर्म मलबूसात, वाटरप्रूफ बैग्स साथ रखें और कोशिश करें कि जब भी आप यात्रा करें एक ही समूह में यात्रा करें, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए, और अपने साथ जो है RFID कार्ड ज़रूर रखें, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान जो है RFID कार्ड के ज़रिए ही आपको ट्रैक किया जाता है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करते रहे, क्योंकि बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप जो है पहले ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें, क्योंकि जिस भी विभाग से आप आते हैं आप पहले ही एडवांस में ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप वादी आए यात्रा की ओर मन बनाएं, क्योंकि विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके लिए काउंटर्स हैं, लेकिन वहाँ पर आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा, और मुमकिन है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन ना भी हो पाए। तो पहले आप कोशिश करें कि आप जिस भी स्टेट से आते हैं वही आप एडवांस में अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया, और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधा

0: रोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में दो दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूक्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organisation has introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted Provident Fund to regularise their status. Labour and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a Provident Fund Trust recognised under the Income Tax Act 1961. The Ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to the concerned regional office. An exempted Provident Fund is an employer-managed PF scheme that handles its own Provident Fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into the Employees Provident Fund Organization. In Maharashtra, the death toll in the Moshi waste depot accident in Pune district has risen to 9 after the bodies of 7 more victims

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। हम दुआ करते हैं कि आज का दिन आपके सफ़र में सुकून, सुरक्षा और खूबसूरत यादें लेकर आएँ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें

0: किस समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 10,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 7,396 पुरुष, 2,275 महिलाएं, 205 बालक, 35 साधु, 8 ट्रांसजेंडर और 101 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, अभी अभी मिली सूचना के अनुसार रामबन और बानीहाल डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा हो रही है। आपको बताते चले, जिन तीर्थ यात्रियों ने आज बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, वो कॉन्वॉय बानीहाल पार करके जम्मू की ओर रवाना हुआ है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गांदरबल से मौजूद हैं हम फोन लाइन पर। रहीम रिजवान साहब, आपका स्वागत करते हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी, और स्वागत करते हैं श्रोताओं का भी, क्योंकि आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में जिसके जरिए जिसके माध्यम से हम श्रोताओं को बालतल के वातावरण एवं मौसम की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। और

0: इस वक्त बालतल में वर्षा हो रही है, हल्की हल्की वर्षा हो रही है और ठंडी भी महसूस हो रही है और मौसम बिल्कुल सुहाना है। सुहाने मौसम के बीच बालतल बेस कैंप से जो श्रद्धालु हैं वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में वो गुफा की तरफ जा रहे हैं जहां वो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचेंगे। और अभी तक जो हमारे पास सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूद हैं तो इस हवाले से हम कहते हैं कि 1783 यात्री जिन्होंने शिवलिंगम का दर्शन किया और वो बालतल बेस कैंप वापस पहुंचे, इनमें से 1360 पुरुष, 370 महिलाएं, 15 बालक बालिका, 4 साधु, 2 ट्रांसजेंडर एवं 32 सुरक्षा कर्मी भी हैं। श्रोताओं को ये हम बताना चाहते हैं कि जहां देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बालतल पहुंच रहे हैं और यहां से उनको पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है ताकि वो यहां माथा टेकेंगे और शिवलिंगम का दर्शन करके देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए अन्य पड़ाव पर तैनात किए गए हैं, उनको भी मौका मिलता है कि वो गुफा जाकर दर्शन करके अपने और अपनों के लिए खुसूसी दुआएं मांगेंगे। तो इस तरह कह सकते हैं हम कि एक बड़ी मात्रा में सुरक्षा कर्मी भी हर रोज बालतल मार्ग से पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करके वापस सुरक्षित पहुंचते हैं। एक तो वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ काम करते हैं और इसके साथ साथ खुद भी वो दर्शन करके सही सलामत वापस पहुंचते हैं। बालतल मार्ग से अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक रूप से पवित्र यात्रा जो है वो बड़ी खुशअसलूबी से जारी है और सुरक्षा कर्मी जो जगह जगह तैनात रखे गए हैं, चाको चौबंद रखे गए हैं, वो यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुंचाते हैं और दर्शन करके सुरक्षित वापस लाते हैं। और यात्री जो ही बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं तो वो रात भर यही रुकते हैं, या कभी कभार ऐसे यात्री भी हैं जो दूसरे रोज भी यहाँ कायम करते हैं और उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद मुख्तलिफ वाहनों में उन यात्रियों को सुबह सवेरे अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाता है। और ये यात्री सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप से निकलकर जो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग है इस पे अपना सफर शुरू करते हैं, तो ट्रांजिट कैंप मैनगाम, ट्रांजिट कैंप शादीपोरा के बाद फिर वो वापस ट्रांजिट कैंप पाथा चौक पहुंचते हैं, उसके बाद नवयुग टनल क्रॉस करते ही वो जम्मू की ओर रवाना होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। श्रोताओं, ये थे हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है, इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर जवेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने ओमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तश्वीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुजाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शुबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के साथ 30वीं भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: BJP ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और

0: इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि क्लिदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लिदी और इकतसादी संग मील करार दिया। उन्होंने वजीर आजम के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लिदी इत्तेहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और उनके लोकसभा हल्के गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहाँ मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप से अपनाएं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मोशी के कूड़े करकट के डिपो के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। आज बचाव कार्रवाई के चौथे दिन 7 और अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स अब भी कूड़े कचरे के ढेर के नीचे फंसा हुआ है और तलाश की कोशिशें जारी हैं। यह हादसा इस महीने की 8 तारीख को उस वक्त पेश आया था जब पुणे ज़िले में मोशी के मुकाम पर कूड़े कचरे का एक बड़ा टीला फाजिल मादों और कचरे वगैरह से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट की इंतजामी इमारत पर ढह गया था और 23 अफराद फंस कर रह गए थे। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह फिर फजाई हमले किए। अबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ये फजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें मिजाइल, ड्रोन और मवासिलाती मराकज शामिल हैं। ईरान ने बहरैन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमरीका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने आम रियायत की स्कीम 2026 का आगाज किया है ताकि मुस्तसना प्रोविडेंट फंड चलाने वाले इदारों को अपने दर्जे को बाजाबता शक्ल देने का एक वक्ती मौका फराहम किया जा सके। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने कहा है कि मजकूरा स्कीम 6 महीने की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी। मजकूरा स्कीम का इतलाक उन इदारों पर होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तस्लीम शुदा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अहल इदारों को ईमेल के जरिए बाजाबता दरख्वास्त मुतालिका इलाकाई दफ्तर को पेश करना होगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। शेख हमद ने कतर पर 18 साल तक हुकूमत की, जिसके बाद 2013 में रजाकाराना तौर पर अपने बेटे को इख्तदार सौंप दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा सानी एक नज़रिया साज रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुँचाया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर एक यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आज ही ख्वातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बुध के रोज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। और विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a 6-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said, the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The External Affairs Ministry said the targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region, in keeping with international law, must be restored at the earliest. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a U.S. military base in Jordan. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if U.S. strikes continue. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding several agreements during a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, a report by our correspondent. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress. The two nations exchanged MOUs and agreements in the fields of defense, critical and rare earth minerals, agriculture,

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंतनाग से जुड़े हैं। एस तारिक अनंतनाग से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हैं और आपसे आज के जो अपडेट्स हैं अभी तक के, वो सुनना चाहेंगे।
1: बहुत शुक्रिया। बाबा बर्फानी के प्रेमियों और श्रद्धालुओं की पवित्र यात्रा सफलतापूर्वक और सुखद रूप से निरंतर जारी है। हम बाबा भोले और बाबा बर्फानी के जय जयकार के गोतों और गहरी आस्था के साथ आज सुबह 4 बजे मनवन आधार शिवत से और निजी अवसाओं में क्याम प्रदीप श्रद्धालुओं के जत्थे चंदनवारी से होते हुए पद यात्रा आगे बढ़ाते हुए शिशनाग और पंचकर्णी के ओर गमन कर रहे हैं। श्रद्धालु, आपको इस प्राचीन यात्रा मार्ग के पुराण परंपरा का भी ज्ञान होगा कि मान्यता है कि भगवान शिव ने पहलगाम के इस प्राचीन मार्ग पर नंदी में अपने वाहन देव को छोड़ा, चंद्रवारी में अपने जटाओं से चंद्रमा को अलग किया और शिशनाग पहुंचकर अपने नाथ को वहीं त्याग दिया। इसके बाद महेश्वरनी में उन्होंने जीवन के 5 तत्वों को समर्पित किया जिनसे सारी सृष्टि और जीवन का वजूद है। यहाँ तक कि महाधनुष पर पर्वत पर अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी वही छोड़कर आगे बढ़े। इसीलिए तीर्थ यात्री इस सभी पवित्र स्थानों से गुजरते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। बहरहाल बात अगर पद यात्रा की करें तो शिशनाग और पंचकर्णी में रात्रि विश्राम करने वाले यात्री भी आज पवित्र गुफा पहुंचकर शिवलिंगम के दर्शन का पुण्य हासिल कर रहे हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 9153 यात्रियों पर मुश्तम 11वां जत्था ट्रांजिट कब काजीगुल से गुजरते हुए बालसर और पहलगाम मार्गों के ओर रवाना हो चुका है। इनमें से पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 210 छोटे बड़े वाहनों में सवार 5724 यात्री सड़क सुरक्षा के बीच पहलगाम पहुंच चुके हैं। इनमें 4272 पुरुष, 1182 महिलाएं, 175 साधु, 91 साधुइयां और 4 बालक शामिल थे। इस तरह 3 जुलाई से अब तक के आंकड़ों के अनुसार बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले शिवभक्तों की संख्या 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि आज 1 बजे तक 14,807 यात्रियों ने दर्शन प्राप्त किया और दर्शन का सिलसिला जारी है। यात्रियों की सेवा और सहूलियत के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साथ हजारों सेवादार भी पूरी समर्पण भाव के साथ अपनी सेवा अंजाम दे रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो आज बड़ा अहम है कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना मगर कई कई हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। गुजश्ता 24 घंटों के दरमियान मध्यम वर्षा के सिलसिला भी जारी रहा। आज दिन भर आकाश में बादल छाए रहने का इम्कान भी है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिशें भी हो सकती है। पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि एक या दो हल्की बारिशों की भी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन

0: पूरी यात्रा मार्ग को सजग और यात्रा योग्य बनाने रखने में निहायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वही एनडीएस और एनडीएपी और एसडीआरएफ के जवान पूरी यात्रा के दौरान किसी भी आपदा आकस्मिक परिस्थिति या चुनौती से निपटने के लिए हर पल मुस्तैदी और चौकन्ना खड़े हैं। और इस तरीके से यात्राओं को भी बार बार ये सूचना दी जा रही है कि वो सफर करते हुए बिल्कुल मौसम का खास ख्याल रखें, अपने जहां भी फिसलन की जगह हो वहां एहतियात करें और अपनी मदद बिल्कुल जो वहां मदद के लिए सेना या दूसरे लोग होते हैं उनसे रब्ता करें और उनकी हेल्प हासिल करें। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता जो कि अनंतनाग से थे। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 17,302 तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें पुरुष यात्री 12,430, महिला 4,307, बच्चे 350, साधु 56, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर यात्री 10 और सुरक्षा बलों के जवान 145 शामिल हैं। आप सुनते रहिए अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रामबन से मोहम्मद तस्कीन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और इनसे आज की ताजा अपडेट सुनेंगे।
1: जी, अभी हाईवे के हवाले से अपडेट यह है कि जो बालतल और पहलगाम के काफिले आज सुबह जम्मू से रवाना किए गए थे तो वो अपने मंजिलों की तरफ इस वक्त चल रहे हैं। 12 बजे के आसपास जो बालतल और उससे पहले थोड़ा पहलगाम वाला जो उसके बाद थोड़ा पहलगाम वाला जो काफले हैं वो कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं और अभी ये पहलगाम और बालतल के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो यहाँ से जो ट्रैफिक जो अपोजिट मतलब जो कश्मीर से वापस जो बालतल से और पहलगाम से दर्शन के बाद जो ट्रैफिक वापस आ रहा था श्री अमरनाथ यात्रियों का, तो उनका एक काफिला अभी यहाँ से गुजर रहा है बालतल वाला, क्योंकि दूर है उसका मंजिल, तो वो अभी रामबन से गुजर रहा है, जबकि पहलगाम वाला कुछ वक्त पहले जो नाशरी चिनानी टनल है उससे गुजर कर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है और जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। आज सुबह से ही जैसे हमने सुबह के ट्रांसमिशन में भी बोला था कि जो मौसम है अब्र आलूद है, तो उसके बाद हल्की हल्की बारिशें हुई है इस सेक्टर में, तो लेकिन बारिशों का कोई ज्यादा शिद्दत नहीं थी, अलबत्ता फवार जैसी बारिश करीबन 1-1.5 घंटे तक चलती रही, तो जिससे मौसम जो है बहुत खुशगवार है, मतलब सर्दी का एहसास हो रहा है कुछ इलाकों में। तो फिलहाल जो बाकी जो अब मुसाफिर ट्रैफिक होता है हाईवे पर या ट्रैक्स होते हैं जिनको श्री अमरनाथ यात्रा के निकालने के बाद या काफिले निकालने के बाद चलने की इजाजत दी जाती है, तो वो ट्रैफिक भी इस वक्त हाईवे पर गुजर रहा है और सैकड़ों और हजारों की तादाद में गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की तरफ बढ़ रही है। आज सुबह जो इससे पहले जो काफले आज जो बाजाबता प्रॉपर सिक्योरिटी में भगवती नगर से रवाना किए जाते हैं, उसके अलावा जो 3 बजे के बाद जो हम बार बार अपने श्रोताओं को अपने ये जो श्री अमरनाथ यात्री हैं उनको कहते हैं कि जो 3 बजे के बाद बानहाल में कट ऑफ टाइमिंग है, उसके बाद आपकी गाड़ी को कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और यही जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये टूरिस्ट व्हीकल्स पर भी आयद है और टूरिस्ट गाड़ियों को भी 3 बजे के बाद बानहाल टनल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती और इसी तरह चंद्रकूट के मुकाम पर इनको 2 बजे से रोका जाता, उसके बाद किसी भी न टूरिस्ट गाड़ी को और ना ही यात्रा गाड़ी को कश्मीर की तरफ आने की इजाजत दी जाती है। बार बार यहाँ पर जो हुक्काम है वो यात्रियों को ये संदेश देते हैं कि ऐलान करते हैं बाजाबता तौर पर जब गाड़ियां रुकती हैं जो 3 बजे के बाद यहाँ पहुंचती है, तो उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि जो कट ऑफ टाइम इस पर स्ट्रिक्टली अमल किया जाता है, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाती है इसके बाद। इसके अलावा उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो बाजाबता जो रजिस्ट्रेशन है जिसके पास होटल कमरा कहीं रहने का हो उसके पास अगर उसकी बुकिंग है तब वो कश्मीर की तरफ जाए, बगैर रजिस्ट्रेशन या बगैर किसी बुकिंग के होटल या किसी और हाउस बोट में उसके बगैर ना जाए, ताकि उन्हें वहां पर भारी रश की वजह से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फिलहाल मौसम बिल्कुल अब्र आलूद है, ठंडा ठंडा मौसम है पूरे रामबन बानहाल सेक्टर में और जो श्री अमरनाथ यात्रा का जो जम्मू की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है जो बालतल और पहलगाम से दर्शन करके वापस आया है, तो वो इस वक्त जम्मू के प्लेनों की तरफ गुजर रहा है और आइंदा 2-2.5 घंटों में ये दोनों काफले जो है जम्मू पहुंच जाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन।
1: शुक्रिया।
0: ये थे हमारे संवाददाता रामबन से मोहम्मद तस्कीन।

0: श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं, आइए सुनते हैं।
1: जी, जम्मू में आज जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको नए अपडेट्स के साथ श्रोताओं तक अपने नए अपडेट्स पहुंचाएं, तो कोशिश ये है कि रोज के रोज जैसा कि रिपोर्ट्स दी जाती है उसमें कोशिश होती है कि माहौल किस तरह का है जम्मू में और तीर्थ यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं वो किस तरह की बुनियादी चीजों में व्यस्त भी है और जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं वहीं साथ साथ उसका उत्साह किस तरह का है। तो मैं बताऊँ आपको कि जम्मू में आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी और कई जगह पर तेज बारिश ने मौसम को सुहाना भी बना दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्री जो है वो भी उन्होंने राहत की सांस ली, वहीं यहाँ के स्थानीय लोग भी उमस और गर्मी से परेशान थे वो भी मौसम के बदले मिजाज से राहत महसूस कर गए। तीर्थ यात्रा के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं लंगर सेवा धारक, बिजली पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारी, यात्रा को स्वच्छ रखने में और उमस और गर्मी के दरमियान सख्त जिस्मानी मेहनत करते जो यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्पेशल टीमें हैं जो इस यात्रा को स्वच्छ भी रख रही हैं, उसके अलावा लंगर सेवाधारक जैसे मैंने कहा वो जिस तरह से काम 24 घंटे करते हैं, सुबह शाम का खाना ब्रेकफास्ट बनाना और सारी चीजें, इसी तरह से जो कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी वो बिजली पानी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं, तो ये तमाम तरह की जो ये गतिविधि है इसमें बहुत से लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और इस काम की वजह से ही ये तीर्थ यात्रा कामयाबी के साथ चल रही है। तो यात्रा को स्वच्छता के साथ जोड़ने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं वो जिस्मानी मेहनत करते हैं और खासतौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्पेशल टीमें जो हैं वो तभी रिवर फ्रंट, भगवती नगर, आधारश्वर और विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सख्त मेहनत करते भी हैं और इसको अभी तक स्वच्छ यात्रा बनाए रखा है, तो एक बहुत अच्छी बात है जिससे माहौल जो है कुदरती माहौल किसी तरह से आलूदा नहीं हो रहा है और जो तीर्थ यात्री है जो हमारे मेहमान है देश के विभिन्न भागों से जो यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें भी शहर को स्वच्छ देखने में अच्छा लगता है, माहौल अच्छा हो और गंदगी से पाक हो तो एक अच्छी फीलिंग भी आती है और तीर्थ यात्रियों के लिए ये बहुत से लोग, बहुत से कर्मचारी जो है, बहुत सी एजेंसियां जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। जिस तरह से शौचालय हैं बाकी जगहों पर लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर अलग तरह से लगाए गए हैं, तो एक जो उनको 24 घंटे देखना भी है, पानी की व्यवस्थाएं भी रखनी है, तो ये सारी चीजें क्योंकि हजारों तीर्थ यात्री यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं और इस यात्रा के साथ जुड़े हजारों कर्मचारी लगातार 24 घंटे भी काम कर रहे हैं। इस तरह से आज मौसमी बदलाव जो है श्रद्धालुओं के लिए राहत भरा रहा, वहीं लंगरों पर मिल रहे व्यंजन भी स्वादिष्ट होने के साथ साथ मौसम के इस बदलाव में अलग ही अनुभव देता है। खासतौर पर यहाँ के जो खास राजमा चावल है जो दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए माना जाता है, तो तीर्थ यात्रियों को भी राजमा चावल खाते देखा जा सकता है। शाम को तवी रिवर फ्रंट पर महाआरती का पूजन होता है जिसमें श्रद्धालु खुल कर हिस्सा लेते हैं और एक अलग समा बांधते हैं क्योंकि ये तवी रिवर फ्रंट का जो एरिया है ये तवी के बिल्कुल किनारे पर है और बहुत ही खूबसूरत दूर से दिखाई देने वाला, बहुत खूबसूरत और अंदर जिस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं उसमें शाम को ये पूजन होता है तो एक अलग समा बांध देता है और इस महाआरती में यात्रियों को रूहानी सुकून का अनुभव भी

0: करता है और वहीं भगवती नगर के आदाश्वर पर भी विभिन्न संस्थाएं पूजा अर्चना और गणेश वंदना पर भी आधारित नृत्य प्रस्तुत करते हैं, मतलब जिसमें बहुत से अलग अलग तरह की पूजाएं भी होती हैं जिसमें श्रद्धालु जोश और जज्बे के साथ इसका हिस्सा भी बनती है और श्रद्धालु जो है वो जब अलग तरह की जो ड्रामे भी होते हैं उनमें श्रद्धालु स्थानीय कलाकारों की जमकर सराहना भी करते हैं। तो एक माहौल चारों तरफ जो है तीर्थ यात्रा का बना हुआ जो है वो बहुत ही बेहतर बना हुआ है और वहीं श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले बाबा बरसाने के कठिन सफर के दौरान सफर की गाइडलाइन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो खास तौर पर एली रिवर फ्रंट और भगवती नगर आधार शिविर जो पहला आधार शिविर है इस तीर्थ यात्रा का, वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि जो तीर्थ यात्री इस कठिन सफर पर निकले तो उनको सभी तरह की जानकारियां हो, किस तरह से आपको मौसम अगर खराब हो तो कैसे चलना है, मौसम अगर ठीक है तो किस तरह से आपने अनुशासित तरीके से इस सफर को पूरा करना है। तो वहीं योगा के लिए भी सुबह शाम शिविर लगते हैं, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या इसमें हिस्सा भी लेती है और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ से रवाना भी होते हैं और आज भी 9000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दोनों मार्गों की तरफ रवाना हुए और लगातार तीर्थ यात्रा जोश खरोश के साथ चल रही है और उम्मीद है कि आगे भी चलती रहेगी। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद,
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से जावेद मेहराब।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
1: खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बाल दल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596999054। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और इनसे ताज़ा अपडेट सुनते हैं। जी इमरान साहब।
1: जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह भी हमने अपडेट किया था श्रीनगर से, चूंकि एनुअल श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अभी जारी है और आज भी यहां से जो अमरनाथ जी यात्री थे उनको पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया, जिसमें सुबह हमने देखा था कि कई सारे जो मर्द खवातीन यानी कि मेल फीमेल और साथ साथ साधु साध्वीज भी शामिल थी और इसमें कुछ चिल्ड्रन भी थे और उन्हें अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। और इसमें सिक्योरिटी की जो कॉन्वॉय थी, जो डिप्लॉयमेंट थी, उनके साथ उनको रवाना किया गया। और हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में आज भी अमरनाथ जी यात्री पहुंचे इस ट्रांजिट कैब में और अभी हम देख रहे थे कि यहाँ कुछ देर पहले अमरनाथ जी यात्रियों का एक और जत्था पहुंचा है जो यहाँ नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह उन्हें अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और आज श्रीनगर में सुबह से थोड़ा सा मौसम खराब है, हालांकि हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन ओवरऑल पहले से ही इस सिलसिले में जो मौसम विभाग है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कि हल्की सी बारिश होगी और हल्की सी बारिश इस वक्त भी श्रीनगर शहर में हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यात्रा शदोमत से जारी है और यहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से सारी जो सुविधाएं हैं वो रखी गई थी और इसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज भी अमरनाथ जी

0: डॉक्टर्स यहाँ पे पहुंचे हैं और वो यहाँ पे जो है यहाँ से उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है और ताकि वो मुकद्दस इस यात्रा का हिस्सा बने और यहाँ पे जो है वहां पहुंच जाए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इधर श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है। और अभी कुछ देर पहले हम कई सारे श्रद्धालुओं से या यात्री से हमने बात की और उनसे हम यही यात्रा के सिलसिले में पूछ रहे थे कि उनका क्या कुछ फीडबैक है, उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है, और साथ ही ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी अरेंजमेंट्स उनके लिए रखे गए हैं और इस सिलसिले में वो किस तरह से अपने ख्याल का इजहार करें या उनकी क्या कुछ ओपिनियंस है। तो हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री अभी तक ओवरऑल इस यात्रा को लेके जो है इस यात्रा को लेके अमरनाथ जी यात्री जो है वो अभी अपना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम रखे गए, जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं, चाहे वो लंगर्स हो, चाहे वो यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, चाहे बाकी जितनी भी बेसिक जो फैसिलिटीज है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है, उन फैसिलिटीज को लेके यात्री जो है वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ श्रीनगर ट्रांजिट कैब में बल्कि अगर आप देखेंगे जो जम्मू से कश्मीर पहुंचे, जो भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ श्रीनगर डायरेक्टली पहुंचे हैं या बाकी ट्रांजिट कैंप्स पे पहुंचे, तो हर यात्री का यही कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उन्हें अच्छी फैसिलिटीज दी गई है, सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडियन आर्मी पुलिस या बाकी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है इस यात्रा को लेके अपनी जो ड्यूटीज दे रहे हैं और जो वो जिस तरह से वो यात्रियों के साथ जो उनका बिहेवियर है और लोकल की वो बढ़ चढ़ के तारीफें कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हम पहले दिन से इस बात को लेके अपडेट कर रहे हैं कि इस पूरी यात्रा को श्रीनगर के एचएमटी में जो कमांड कंट्रोल सेंटर जो एस्टेब्लिश किया गया है, इस कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है। और इस वक्त चूंकि बारिश हो रही है तो बारिश को लेके भी पूरी यात्रा को लेके रूट्स पर नजर है और इसके अलावा सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के जितने भी मोर देन 25 जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पे सिस्टम लगे हुए मॉनिटर के जरिए से वो पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि अगर कहीं पे कोई किसी यात्री को दिक्कत हो या कहीं कोई परेशानी हो या किसी तरह की कोई असिस्टेंस की जरूरत हो सो इमीडिएटली कोऑर्डिनेशन के जरिए से उनकी जो है हेल्प की जाती है। और साथ साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ इस ट्रांजिट कैंप में भी एसएसपी श्रीनगर या फिर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रिसेंटली एलजी साहब का या आईजीपी साहब का या जितने भी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और ओवरऑल यात्रियों से वो मिल रहे हैं, यात्रियों से उनकी उनके ख्यालात जान रहे हैं, उनकी ओपिनियंस उनका फीडबैक हासिल कर रहे हैं। और साथ साथ यात्रियों से भी जो अपील की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ जो एक एडवाइजरी जारी की गई है उसको यात्री फॉलो करें, वो चाहे श्राइन बोर्ड हो, वो चाहे यहाँ की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो यात्री गवर्नमेंट की उन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें, गवर्नमेंट की एडवाइजरीज को जो गवर्नमेंट ने इशू की है उसको फॉलो करें। सो एज सच हम देख रहे हैं कि अभी यात्रा जो है बड़े ही खुश असलूबी या पीसफुल तरीके से हम यूं कहें कि जारी है और इस यात्रा को लेके सभी यात्री जो अपना फीडबैक दे रहे हैं वो पॉजिटिव है। और यहाँ श्रीनगर में भी और बाकी जगहों पे भी, खासकर श्रीनगर में जो पंथर चौक ट्रांजिट कैंप है, यहाँ सिर्फ ऑनलाइन ही ये मैकेनिज्म नहीं है कि अगर किसी यात्री की कोई शिकायत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे, बल्कि काउंटर्स यहाँ पे सेटअप किए गए, इंस्टॉल किए गए हैं ताकि उन काउंटर्स पर यात्री जाके अपनी जो हेल्प है वो हासिल कर सकते हैं, यानी कि हेल्प डेस्क यहाँ कायम किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ बाकी जो स्टॉल्स भी है जिसमें यहाँ का लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी वहां पे भी वो विजिट कर रहे हैं। जैसा कि एलजी साहब ने भी परसों यहाँ आके कहा था कि यात्रियों से अपील की थी कि जो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है वो भी यहाँ से खरीदें ताकि इसकी भी जो है यात्रियों के जरिए से ये एक तो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा भी बन जाए, थोड़ी सी इसमें वो भी मदद हो जाए, और दूसरा है कि हमारा जो आर्ट और हमारा जो आर्टिजन्स है उनको उसको भी प्रमोशन मिले और आर्टिजन्स की खासकर जो है दस्तकारी जो है उनको थोड़ी सी इसमें रहनुमाई हासिल हो, यानी कि उनको अप्रिसिएशन मिले, एनकरेजमेंट मिले। सो एज ऑफ नो हम देख रहे हैं कि यात्रा को लेके ना सिर्फ अमरनाथ जी यात्री इस पवित्र गुफा का दर्शन करें बल्कि कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की फिजा की तारीफें भी कर रहे हैं, और खासकर वो यात्री जो पहली मरतबा यहाँ पे आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो ऑन टो है, 24/7 यात्रियों की हेल्प की जा रही है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान साहब। ये थे हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नाइको। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। हमारे साथ बने रहिए। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चलें, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 359 छोटे बड़े वाहनों में 9153 तीर्थ यात्री घाटी पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3429 तीर्थ यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5724 तीर्थ यात्री शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596999054। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का सफ़र नहीं, बल्कि आस्था और सब्र की मिसाल है। हर यात्री मुश्किल रास्तों पर भी अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर श्रद्धा और दिल में भक्ति बनी रहती है। ये पवित्र यात्रा हर यात्री के मन को शांति और एक नई ऊर्जा से भर देती है। श्रोताओं, आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 22,071 तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें पुरुष यात्री 15,931, महिला यात्री 5,504, बच्चे 382, साधु 66, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर यात्री 12 और सुरक्षा बलों के जवान 172 शामिल हैं।
1: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं गांदरबल से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है रहीम साहब। और आप बताइए, क्या कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं आप हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो श्रोताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि मालतल के पूरे क्षेत्र में आज सुबह सवेरे से आकाश पर बादल छाए हुए हैं, वर्षा भी हो रही है। इस ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए आज 10वें रोज सुबह 7:30 बजे तक 10,563 यात्रियों को मालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। बम बम बोले हरण महादेव का पवित्र नाद करते हुए जिन श्रद्धालु ने दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार करके पवित्र गुफा की ओर अपना सफर शुरू किया, उनमें 8,637 पुरुष, 1,615 महिलाएं, 86 बालक बालिका, 23 साधु, 19 साधियां, 4 ट्रांसजेंडर एवं 179 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। यात्रियों को जहां कड़े सुरक्षा के बीच दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिनमें भोजन, शौचालय, साफ पानी, बिजली, नहाने के लिए गर्म पानी तथा रात्रि विश्राम के लिए उम्दा बेडिंग भी शामिल है। यात्रियों को गुफा जाने से पहले

0: बागटल बेस कैंप में कायम किए गए 100 बेड वाले अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर मेडिकल चेकअप किया जाता है, जहां तमाम आपातकालीन सेवाएं, अद्वियात एवं अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी गई हैं। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने बागटल से पवित्र गुफा तक अन्य पड़ाव पर चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं, जहां देश के विभिन्न अस्पतालों के माहिर डॉक्टर तथा पैरामेडिकल अधिकारियों की सहायता दस्तियाब रखी गई। श्रोताओ, आप जानते हैं कि बागटल मुख्य मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए आपको ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना पड़ता है, जहां अक्सर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। लिहाजा चिकित्सा विभाग ने जगह जगह आपकी सहायता के लिए ऑक्सीजन व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी हैं, ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अलबत्ता यात्रियों से प्रशासन के द्वारा बार बार ये निवेदन किया जाता है कि वह जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें एवं यात्रा के दौरान गर्म कपड़े तथा रेनकोट साथ रखना ना भूलें। आराम से सफर करें एवं संयम और धीरज से काम लें, क्योंकि आपकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। बागटल क्षेत्र में वर्षा हो या गर्मी हो, सफर करने से ना डरें, क्योंकि आपकी सहायता के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वॉलंटियर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और सीसी 122 के अधिकारियों के अलावा अन्य एजेंसियों के अधिकारी 24 घंटे चाको चौबंद है। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नस्ब किए गए हैं, जबकि यात्रियों की सुरक्षा एवं शांति बनाने के लिए कड़ी निगाह रखी जाती है। इस दौरान ड्रोन का भी उपयोग किया जाता है।
1: जी रहीम साहब, ट्रैफिक के निजाम के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं?
0: तो अगर हम ट्रैफिक की बात करेंगे तो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर जो वाहन यात्रियों की चलती हैं, तो उन्हें पहली यानी तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान आगे पीछे यानी कॉन्वॉय जो यात्रियों की जाती है, उसके आगे पीछे या दाएं बाएं किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लिहाजा यात्रियों को तरजीही बुनियादों पर पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाती है या बागटल से वापस जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जाती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रहीम रिजवान साहब,
0: धन्यवाद।
1: ये थे गांदरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान। श्रोताओं, आइए बागटल बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती सुनते हैं।

श्रोताओं, इसके साथ ही आज की ये सभा संपन्न होती है। आपको बता दें, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता थे श्री वसीम फारूक और गुलाम रसूल आखून। प्रातः 6:53 पर अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए

घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार।

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे आहार विधि दीना। सुबह तक सकल चारों दिशे जाऊ, धर धर भालु की सब खाऊ।
2: श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय।
0: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डा रही, झपट ही चरण गही पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा,
1: सुनो वीर, सुनो जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
3: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
4: शत्रु को ललकारे और वानर भालुओं से भी
3: कहाँ है अंगद और हनुमान,
4: नल नील और दुर्विंद कहाँ है।
5: श्री रघुवीर की
6: जय।
5: श्री रघुवीर की
6: जय।
3: वो देखो, हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुँचे, एक पर्वत लेकर मेघनाथ पर दौड़े।
4: अरे पंजरत सारथी निपाता, ताही हृदय महु मानस हिलाता।
3: उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उतर कर गढ़ पर चढ़ गए।
7: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
8: हमारी वानर सेना कितनी विकट है। अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं।
0: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भय निमिख मह अति अंधियारा, बृष्टि होई रुधिरो पल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रमुत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे, कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहीं भाली बली मुख रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
1: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत
9: जी,
1: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहु न सुख पायो।
1: क्या कहा?
0: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता
1: है? मालवंत,
0: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
1: अरे भागे, तू अपना मुंह काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
0: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
6: पिताजी, प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा। अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
1: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
9: घोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल, नील, दिवित, सुग्रीव और अत्यंत बली अंगद और हनुमान कहाँ हैं? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हट पूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
0: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया। पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जाम्बवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेम का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी।
1: श्री राम
2: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए।
1: कुशलाधीश
2: हेतात लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ।
1: वनवास की प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखा से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
2: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातःकाल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
1: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत ग्रीष्म और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है। मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते। जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि।

करिबार करे हिया असम जीवन बंधु बिनु तोही जौ जण देव जियावै मोही हाय हाय मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा। नीच जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण अधारा सौ पैसी मोही तुम्हें ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी हुतरु काह देहु तेह जाई उठकिन मोहे सिखावहु भाई हाय

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना न सुई जा रही है और तुम्हें नींद क्या रही है, उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं?
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हर लाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है? भाई अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य हैं?
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो?
1: भाई बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई? तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा, तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नित्य सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करो।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ, मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है?
2: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूँ। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो?
2: तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पही आये हूँ, देख दीन प्रभु के मन भाये हूँ।
1: सुन सुत, भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे उ राम शोभा सुख सागर। तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर, रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा अब तू जा और मैं भी चला।
3: सबको खा जाऊं।
4: अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर, मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं।
0: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
5: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
6: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध विध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जांबवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जांबवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
7: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
4: अंगद, सुग्रीव आदि बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका यह यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संतुष्ट देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए।

0: हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
1: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जोते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो, जो सत्संग कर ही सहाई, तदपि हतो रघुबीर दुहाई।

0: पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरी मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींच तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए।
4: सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मथल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा।
5: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी जीता वीर भलवाना।
6: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतों रिपुताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
5: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु

0: दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हु जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत ज सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। खरदूषण विराद तुम हमारा, बदिर व्याद बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नाद है मारे हु। आज बयर सब ले निबाही।
2: जोरण भूप भाजी नहीं जाही, आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का

0: उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो यह कहा कह से किन माता के बिच मरे ही पे सुख दाता, कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूं न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही, मोर अभाग्य जियावत ओही, चेहि हूं हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती बाई देही। सुंदरी संदेह मत करो, सुनो शत्रु इस प्रकार मरेगा, काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा ही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मह मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे तुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है, तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय शुग संभई सिरातिन राती। अरे इस समय ये मेरा बाया नेत्र और बाहु कैसे भड़क उठे, क्या क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र भेंट होगी। प्राणनाथ स्वामी,
0: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा, उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायु बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना, 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे, काटते ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश।
3: शत्रु को जीवित देख देवता सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु।
4: क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण?
3: हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है।
5: कहा राम, कहा राम रणहतो पुचारी।
6: श्री रामचंद्र महाराज की
0: श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी, वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं।
1: धरणी तेजहीन पावक धरणी, शेष कमठ सही सकही न भारा, सोतन भूमि परे परिचारा। स्वामी विदाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोगों के स्वामी सदैव डरते हुए तुम्हें मस्तक नवा।

0: हम तुम्हारे सिर और पुजितंड की धड़ों का भोजन बनेंगे। तुम श्री राम से विमुख रहे। ये तो होना ही था। काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना। और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से त्रोह करने पर तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ।
1: घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गईं। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीत के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा।

0: यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी रातीं ढेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी रातीं ढेरी ओ जान भी दे हुण सोहणी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।